0: One is perfect for a solo. With two, you can play doubles. The more the merrier. How about a quartet? You could even form a basketball team. How many children should you have? The choice is yours. Be sure to plan ahead and plan it well. Call the Family Planning Association of Hong Kong on 2572-2222.
1: If you have any thoughts or comments about any programs on Metro Broadcast, please let us know by email at prinquiry@nbc.com.hk. That's prinquiry@nbc.com.hk or call 3698-8210, 3698-8210. During office hours from 9 a.m. to 6 p.m. or send us a mail on P.O. Box 84228, Hung Hum Bay Post Office, Kowloon. Metro Broadcast. We care.
2: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
3: Namaste, Sasrikaal, Salam, Kitao, Jisare, Vadiya, Paji, Bod Vadiya, Aj, Heji, Chabbis, June, 2026. Shuru karte hai mara show. I think we've got around six announcements tonight. So, yeah, fatafat shuru karte hai. And we've also got lots of song requests, so we will try to play as many songs as possible. Okay, so the first announcement is breast awareness and breast cancer prevention. Hong Kong mein mahilaon mein sabse common cancer hai breast cancer. Har mahila ko apne breasts ke normal look aur feel ke bare mein pata hona chahiye. Hamesha breast aware raho. Koi bhi unusual change dikhe to turant dhyan do. Jaise breast mein lump, साइज या शेप में फर्क, निप्पल का अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना. अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो. ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया तो जिंदगी बच सकती है. प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो. ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.cancer.gov.hk/breastcancer को विजिट कर सकते हैं. अपना ख्याल रखो. ऑलराइटी, आते हैं जी हमारे पहले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय रूबी एंड इन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है दैट इज तेरे दिल पे हक बाय विशाल मिश्रा एंड इट्स रिक्वेस्टेड फॉर साकिब. एंजॉय द सॉन्ग.

0: एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी हमारे दूसरे अनाउंसमेंट पर. दिस इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग. बच्चों को डांटना और मारना सिर्फ गुस्सा निकालने का तरीका है, लेकिन इससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप खराब होता है और बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है. अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए और पेरेंटिंग के बेहतर तरीके अपनाइए. अगर मदद चाहिए तो फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल से बात कीजिए. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन को कॉल कर सकते हैं, नंबर है 2343-2255. गुस्सा कंट्रोल करो, पेरेंटिंग आसान हो जाएगी. आप बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. ये मनी ने गाना रिक्वेस्ट किया है. गाने का नाम है मैनू इन्ने ही सा बाय कलेर कंत. सो एंजॉय द सॉन्ग.
1: Gurmeet Singh, Kalir Kant, with Rajiv and the Keys, yeah.

And welcome back, guys. बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट. क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं. यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है. किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. वहाँ एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो. अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस करो और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं. खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है. इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से. लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में है. अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरैक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यूज़ कीजिए. ओके, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज़ रिक्वेस्टेड बाय एन अनोनिमस पर्सन और उन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है दिस इज पन्ना की तमन्ना. दिस इज फॉर, उन्होंने बताया नहीं किसके लिए है लेकिन आई एम श्योर कि जिसके लिए भी है उनको मालूम है ये किसके लिए है. तो एनीवेज एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज पन्ना की तमन्ना.

एंड वेलकम बैक गाइस, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। लेबर डिपार्टमेंट, ये है जी लेबर राइट्स अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। कई लोग सोचते हैं कि शॉर्ट आवर्स या टेम्पररी जॉब वाले एम्प्लॉयज को लेबर लॉज की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ये गलत फहमी है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर आने वाले सभी एम्प्लॉयज फुल टाइम या पार्ट टाइम आवर्स चाहे जितने भी हो, उनको बेसिक प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे सैलरी प्रोटेक्शन और स्टैट्यूटरी हॉलीडेज। अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में है और कंडीशंस पूरी करता है तो उसको और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे हॉलीडे पे और सिकनेस अलाउंस। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखो। वेबसाइट है www.labor.gov.hk। ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। एंड दिस इज रिक्वेस्टेड बाय सोनिया फॉर जेट विस्की। एंड गाने का नाम है जी सानू इश्क बरंडी। सरदूल सिकंदर का गाना है, बहुत पुराना गाना है। आई एम श्योर जिनको मालूम है कि सरदूल सिकंदर कौन है, वो ये गाना एंजॉय करेंगे। एनीवेज, एंजॉय द सॉन्ग सानू इश्क बरंडी बाय सरदूल सिकंदर।

0: And welcome back. Moving on to our next announcement. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोविड-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अपनी सफाई और घर परिवार की हाइजीन का ख्याल रखो। खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो। हाथ लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धो लो। अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स वाले, 65 साल के बुजुर्ग और उससे ज़्यादा 65 साल और उससे ज़्यादा के बुजुर्ग, 50 और 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.chp.gov.hk पर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग। ये हार्वी सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया है एंड गाने का नाम है जी दिल्ली विच बाय रमता नवीन। ये भी बहुत अच्छा गाना है एंड दिस इज डेडिकेट तो लिखा नहीं है, रमता नवीन दिल्ली विच। ओके, एनीवेज आप ये गाना एंजॉय कीजिए, हार्वी सिंह ने ये रिक्वेस्ट किया है। एंजॉय द सॉन्ग।
1: लो जी नज़म सुनो।

And coming on to our last announcement, this is the Working Family Allowance Scheme. Working Family Allowance Scheme, जिसे short में WFA कहते हैं, अब application के लिए खुला है. ये household के नाम पर apply होता है. पूरा household Hong Kong resident होना चाहिए. अगर आपके घर वालों के total working hours, income और assets limit के अंदर है, तो आप apply कर सकते हो. एक महीने में एक से ज़्यादा jobs के working hours count किए जा सकते हैं, full time और part time दोनों. अलाउंस के टाइप्स, अगर टोटल 144 आवर्स या उससे ज़्यादा है तो वो बेसिक अलाउंस में आता है. 168 आवर्स या उससे ज़्यादा है तो मीडियम अलाउंस में आता है. 192 आवर्स या उससे ज़्यादा है तो हायर अलाउंस में आता है. हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट, थ्री क्वार्टर रेट या हाफ रेट मिल सकता है. फुल रेट है बेसिक अलाउंस के लिए 1,150 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, मीडियम के लिए है 1,380 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ और हायर के लिए है 1,610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ. हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है. उसका फुल रेट है 1,610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ और पर चाइल्ड. नोट रखें कि जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते. पूरी डिटेल्स, इनकम एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk. कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं 2558-3000. ऑलराइट, नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय क्लोई कैम. गाने का नाम है जी दिल की इबादत. गाया है इसको KK ने. एंड messages, this is for my boyfriend Heather Bilal in Stanley Prison, and I want to say, Billy, you're the one I've been looking for all my life. Your baby girl loves you and misses you. See you soon, my love. All right, so that's the message. Aap ye gana enjoy kijiye, Dil Ki Ibadat by KK. Enjoy the song.

0: Station.
1: And welcome back, guys. अगला गाना request किया है FIHK ने. Message है, hello, how are you, Romy Bhai? I hope you're doing good. The song is dedicated to you, Romy Bhai, Pappu Waiz and Bhatt Saab and Fari Waiz Mirza Zubair Khan, Ranja Ansar and Guru Gursevak Singh from FIHK. Thank you. गाने का नाम है जी टोका. गाया है इसको इकबाल ने. And I hope you will like the song. So enjoy it.
2: याद रखनी चाहिए कि बिलने विच पए हुए गन्ने ते कोल्लू विच पए हुए तिल कदे सुखे वापस नहीं आते.
3: ये ब्रो
4: आया तस्वीर ब्रो सफर सारा

0: बहुत जल आई है का दोनों बहन हम लोग गाना सुना रहे।
1: चंदा
0: ने पूछा तारों से,
1: चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा,
0: लव इज पापा,
1: लव इज पापा।
0: ना ध्यान रखिएगा,
1: ध्यान रखिएगा,
0: खाना पीना ठीक से खाइएगा,
1: खाना पीना ठीक से खाइएगा।
0: पापा नाइज आपसे बात करेगी।
1: पापा मेरा पीना बहुत अच्छी है, आप हमको हर चीज देती है, हमको हर चीज खिलाती है, मैं बहुत ध्यान रखती है मेरा बुखार का। मम्मा लोग चले जाती है तो आप भी ध्यान रखती है। ए चप्पी से बात
0: कर, अपना ध्यान रखिएगा। और अनायदा जो बोली बहुत बनवास है। अस्सलाम वालेकुम पापा।
1: वालेकुम पापा, हम नहीं बनवास ले पापा।
2: This message is for a very special young man, my grandson, Brandon Spoon. Hey, sweetheart. Just wanted to chime in and tell you I love you. I miss you. And I hope you're having a good week. I hope to get a letter soon. And I also hope that you're receiving our letters by now. I love you, sweetheart. Everybody here sends their love. And hope to hear from you soon. Love your Nana.
3: Hello, Wendy. Good afternoon. Hi, this is Anani Opo. The main reason I'm giving you a voice note is to let you know. I don't know where to start. Yeah, first of all, I hope you're doing your honor. I hope they're mine. But the unfortunate thing is that Dad has died. Very happy to go. So. I'm much worried now, and I plan in September for the burial. So, Ponus Bata, Nabwari, Nemia, Ma, no one does or have a child. So, Nabwari had a clearance. Yeah, you may see everything. Nabwari made clearance, image clearance. Namazi, Fisa date, but I choose to. First week of September for the burial. So no here, not there. So as I can go talk around. Then in my own garden, it would be some time ago, but I complete them. So I got to come back. My own name is Shaya. I complete everything before burial. So when I work concern, I go talk around. You do quite well. So when I saw that. Because as it stands now, all some more behind even my everything, my clearance anime more behind in it. So I can not quarter mom no more open over a case yet to a cambo yao. I will support come on when I misery uno folk at least mother but a honorable a bad or name me. I need to cook a mezuko kitchen, raw kitchen, a bay and always in. I will kitchen a mother. I can't ever will see any may end us. So we are not there. I am second quarter. One wrong comma. We know I buy woman. A man not easy. Because she don't be. I will hear my 2 years. Remember to him at 2 years. Buy a higher like that. We all just BP and manage. And now, when the bathroom is not serious, come with table, you have a garden work table. One up what you have sometimes. Now, you need to go every month. We have send more than 100,000 every month. Come my have a so sometimes you have your pan yego. You make car all the time, most of the time. So, and my joy when I, at least, I'm able, I was able, we are able to make him happy before now. So, no, no, no. When you see to my brother. My wife was in the house, ma.
4: Assalamu alaikum. क्या हाल है, कैसे हैं? कल को राज में लोग मुलाकात करके गए ना, फोन किए, बोले कि सो नहीं रहा है, सेहत बहुत कम हो गया है, कहा है इतना टेंशन ले रहे, इतना दिन तो गुजार ही लिया आप, बस अब डेढ़ महीना का बात है, हम जान जाएंगे तो बाहर में आप तो अंदर में हैं, आपको कितना परेशान है, कितना तकलीफ होता होगा, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को भी निकाल देंगे। अपना ध्यान रखिए, सही से खाना पीना खाइए, सोइए सही से, नहीं तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपको। अपना ध्यान रखिए। हाँ भी सब ठीक है, दादी एकदम ठीक है, यही है दादी, आगे चच्ची है घर से, दादी एकदम ठीक है। अब अपना ध्यान रखिए, सब ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिस यू सो मच।
5: हम ठीक है बाबू, हमारे लिए मत घबरा, हम ठीक है। हाँ अल्लाह तुझको याद दे, अल्लाह तुझको ठीक रखे।
6: अस्सलाम वालेकुम। हाँ दादी ठीक है एकदम, आप परेशान मत होइए, आप अपना ध्यान रखिए, खाइए पीजिए सही से, अपना ध्यान रखिए।
5: हेलो बाबू, हम लोग सब ठीक है बाबू, तो जल्दी से आ जा, बस तेरा इंतजार है हम लोग को। अल्लाह करते अच्छा रहो, अल्लाह खुश रखे तेरा तकदीर आगे चल के, अल्लाह बहुत खुश रखेगा। हाँ फोन जल्दी करेगा बेटा,
6: ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।
7: Hola, se me llama para Eric. ¿Qué más, Eric? ¿Cómo está? Hola, Manuela. Ya hoy recibí la carta que me envió. No sé si escuchó la semana pasada, yo le había mandado un audio a la emisora, pero pues no sé si lo escuchó, que le decía que no me llegaban pues las cartas. Pero no, ya me llegó esta. Le voy a compartir entonces el número de la abuela para que pueda llamar a doña Ofelia. Es 320-360-3301. Ya sería pues que la pueda llamar. Yo igual le voy a decir a Lice que si puede decirle que estén pendientes, que usted va a llamar, listo. Ahí quedamos y yo ya te voy a mandar una cartica pues con todo. Un abrazo.
8: Leandro Teles Correia. Boa tarde, meu filho. Tudo bem por aí? A mãe tá com muita saudade de você, tá? Quando ligar pra Solange, manda ela gravar pra mãe escutar tua voz, pra mãe matar a saudade, que a saudade dói demais. Tá bom, meu filho? Um beijo. Nossa Senhora que te proteja. A mãe reza todo dia para Nossa Senhora te proteger e te abençoar. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe. A mãe te ama muito, Irene. Te amo, te amo, te amo.
9: Fernanda da Silva, meu marido muito amado. Eu fecho os olhos para não ver passar o tempo. Sabe essa música, né? Pois eu estava aqui sozinha, aqui a pensar em ti, e lembrei dessa música de Roberto Carlos. Talvez não tenhas percebido bem, né? Canta mais um bocadinho!